0: जिनसे खून में शुगर की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
1: आज हमने आपको सलाद की जो तरकीब बताई है उनमें खुम्बियाँ, अवोकाडो, टमाटर और प्याज शामिल हैं, जो सब गिजाई रेशों से भरपूर हैं।
0: और जनाब, इसके अलावा लहमियात खाइए, जैसा कि गोश्त और मछली। लहमियात से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करते हैं, और खून में शुगर की सतह को आसानी से बढ़ा देने वाली रोटी और चावल जैसी नशास्तादार ग़िज़ा को खाने के आखिर में रखिए।
1: जी बिल्कुल गुल साहब, इस तरीके को घर से बाहर खाना खाते हुए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: और हाँ सोफिया, एक बहुत अहम बात तो रही गई, मोतदिल वर्जिश भी ज़ियाबीतस की रोकथाम और इलाज के लिए बहुत अहम है, लिहाजा जनाब साथ साथ वर्जिश करना मत भूलिए।
1: सामिन, आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। हमें उम्मीद है आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। गुल, आज तक हम सलाद को साइड डिश के तौर पर बनाते चले आए हैं, लेकिन आज तो उसको मरकजी हैसियत हासिल हो गई।
0: यानी इसकी मरकजी हैसियत को भी तस्लीम कर लिया गया है। अगर वैसे रोजाना सोफिया सा सलाद हमारे खानों में शामिल हो तो हम सब फिट रहेंगे।
1: जी, और खास तौर पे गुल, अब गर्मियों की आमद आमद है, जिसमें ज्यादातर लोग कहते हैं भूख नहीं लग रही, भूख कम हो जाती है, और अगर ये ओकस सलाद की एक पेट रोज खा लें तो काफी नहीं रहेगी।
0: लेकिन सोफिया, आज की तरकीब में कुछ अज्जा ऐसे हैं जो हर जगह मेरे ख्याल है कि आसानी से दस्तयाब नहीं होते, तो क्या इसके लिए आपने कोई हल तलाश किया है?
1: जी, और इसमें सबसे बड़ा मसला आपको मैं बताऊं, दाशी बनाने का है।
0: जी जी,
1: जिसके लिए फिश फ्लेक्स तो हर जगह मिलते ही नहीं है, लेकिन फिक्र ना करें, उसकी जगह चिकन सूप भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
0: चलें, ये मसला तो आपने हल कर दिया, अब ब्रोकली का निम्न बदल भी बता देना।
1: गुल, ब्रोकली वैसे अक्सर जगहों पे मिल भी जाती है, लेकिन अगर कहीं ना मिले किसी इलाके में तो फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर को डाला जा सकता है। गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुछ मिनट के लिए उबाल लें, उसमें अगर नमक भी डाल दिया जाए तो अच्छा ही है। गोभी जब नरम हो जाए तो गर्म पानी से निकाल कर ठंडे पानी में डाल दीजिए और सलाद में शामिल कर लीजिए।
0: चलें जी, इस चैलेंज में तो आप हो गई पास। अब मेरे पास एक और सवाल है, और सवाल ये है कि शिमी जी, मशरूम का क्या करें? हमारे यहाँ तो एक ही किस्म का मशरूम ज्यादा जाना जाता है और वो भी हर जगह नहीं मिलता।
1: ये मसला तो है, लेकिन गुल आपने देखा होगा कि एक जो मशरूम है वो वही डाल लें जो मिलता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी मशरूम ना मिले तो, और किसी को अक्सर ये होता है कि जायका भी पसंद नहीं आता है, तो उसमें बीन्स या ऑलिव भी बेहतर नेमुल बदल हो सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, सलाद में मुख्तलिफ अकसाम के बीन्स और तोफू तो मैं भी जरूर डालती हूँ, बड़े मजे के लगते हैं।
0: सोफिया माफी चाहता हूँ, मगर एक और मसला भी है।
1: जी जी बताएं।
0: और वो मसला ये है कि झींगे,
1: जी
0: कुछ लोगों को एलर्जी होती है, किसी को पसंद नहीं होते, तो उनका क्या करें?
1: जी, और किसी को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है। जी जी, मैं खुद कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको बिल्कुल ये पसंद नहीं, देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन चिकन जिंदाबाद, उबले हुए चिकन डाल दीजिए। लेकिन अगर सी फूड वाला ही खाना है सलाद, तो फिर मछली डाल लें।
0: भी सोफिया, कच्ची तो नहीं डाल सकते मछली को?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: तो क्या इसे भी झींगे की तरह उबाल लें तो? या और आपने ये तो बताया ना कि मछली कौन सी अच्छी रहेगी?
1: कोई भी मछली जिसका गोश्त सफेद हो, ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें चकोर।
0: अच्छा।
1: सोया सॉस, काले मिर्च और नमक डालकर इसको पकाएं और ठंडा करके सर्व करने से कुछ देर पहले ही सलाद पर फैला दीजिए।
0: बहुत खूब, वैसे लगता है कि आज आपने ठान लिया है कि सलाद सामीन से बनवा कर ही छोड़ेंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: कोई बहाना नहीं चलेगा कि अज्जा दस्तयाब नहीं थे।
1: जी,
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
3: जी सामीन, प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। सामीन, तश्वीशनाक बात यह है कि आजकल जापान समेत दुनिया भर में पहले के मुकाबले में हर उम्र के अफराद में डायबिटीज के मर्ज में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल अब बहुत जरूरी हो गया है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके। आप भी हमें बताएं कि आप इस मर्ज से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिचिवा, नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को वायला खवानों का भी कोनिचिवा, नमस्कार। फिर आया एक नया रविवार और साथ ही लेकर आ गए हम आपके पत्रों के जवाब और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: और बताएं वायला जी, इस गर्मी में क्या हाल है?
1: शांग्रीला जी, हाल तो एकदम बढ़िया है। देखिए, कभी मौसम का मिजाज ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी तेज गर्मी हो जाती है, तो कभी पारा लुढ़क जाता है, तो मौसम कभी कभी सुहावना भी हो जाता है।
0: सही कहा आपने, बीते सप्ताह तो तापमान ऐसा चढ़ा कि लगा गर्मियां आ गई।
1: हाँ,
0: फिर बारिश की बौछार ने कुछ राहत दी और साथ ही इन दिनों देखिए जगह जगह खिल रहे गुलाब के फूल भी खूब खुशियां बिखेर रहे हैं।
1: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। देखिए, साकुरा की बहार के बाद तो जैसे प्रकृति चहुं ओर खिल जाती है, एक के बाद एक अलग अलग तरह तरह के फूल लोगों को खूब आकर्षित करते हैं ना?
0: जी हाँ, देखिए अभी हाल ही में मुझे एक जापानी दंपति के घर जाने का मौका मिला।
1: अच्छा,
0: उनका घर तो जैसे किसी परियों का घर लग रहा था।
1: अरे वाह, अच्छा ऐसा था, मतलब क्या था उस
0: परियों की कहानी लग रही थी, मतलब उसका बाहर से बहुत ही सुंदर था।
1: अच्छा,
0: उनके देखिए घर की बाहरी दीवारों पर चारों ओर गुलाब की बेले लिपटी हुई थी। मतलब दो मंजिला मकान था तो बेले ऊपर दो मंजिला तक चढ़ी हुई थी। इतने तरह तरह की किस्में और इतने रंग बिरंगे गुलाब की आप कल्पना भी नहीं कर सकती। कुछ बेल की आयु तो 50 साल से अधिक थी।
1: अच्छा,
0: और वो प्यार से बता रहे थे कि ये बेल उन्होंने इस साल लगाई, ये उन्होंने इस साल लगाई। और एक ही घर में सैकड़ों की संख्या में गुलाब थे।
1: वाह, इतने फूल और इतने पेड़। लेकिन देखिए, देखरेख में भी खासी मेहनत लगती होगी उनको।
0: जी जी बिल्कुल लगती है। और देखिए ना, साल भर इन पेड़ों की फूलों की इतनी
1: सेवा करनी पड़ती
0: है। जी जी, सेवा करनी पड़ती है। और कुछ ही दिनों की फिर ये छटा बिखेर कर चले जाते हैं, ढेर सारी यादें और मन में ढेर सारी खूबसूरती देकर।
1: जी जी,
0: उनके घर के सामने से जो भी निकलता था वो पल भर के लिए तो ठिठक ही जाता था गुलाबों को निहारने के लिए।
1: हाँ, देखिए बीते कुछ दिनों हमने भी तो स्टूडियो में गुलाबों का आनंद लिया था ना।
0: जी और, हाँ,
1: हमारे श्रोता मित्रों ने हमारी साप्ताहिक रील में देखा ही होगा। लेकिन शांग्रीला जी, देखिए अब गुलाबों से रुख करते हैं पत्रों की ओर, क्योंकि श्रोता मित्रों के साथ ही मुझे भी इंतजार है उनकी राय जानने का।
0: तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। पहला पत्र है ओडिशा के सिंगा से। जगह का नाम सुनकर तो आप पहचान ही गई होंगी कि किसका पत्र है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत ही नियमित श्रोता मित्र सुरेश अग्रवाल जी का खत है आपके हाथ में। और देखिए, हर कार्यक्रम पर इतनी गहरी टिप्पणी दिया करते हैं, तो इस बार क्या लिखा है सुरेश जी ने?
0: लिखा है, सबसे पहले तो आदरणीय वायला जी एवं रोहिणी जी, सस्ने नमस्कार।
1: सुरेश जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार।
0: आगे लिखा है, 17 मई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम में श्रोता मित्रों के पत्रों एवं प्रतिक्रियाओं के उपरांत जापान की दैनिक जीवन शैली में साइकिल की महत्वपूर्ण भूमिका तथा साइकिल चलाते समय नियमों की अनदेखी करने पर लगाए जाने वाले ब्लू टिकट चालान संबंधी अत्यंत उपयोगी जानकारी सुनने को मिली।
1: अच्छा,
0: निसंदेह जापान में साइकिल की लगातार बनी लोकप्रियता वहां के लोगों की स्वास्थ्य जागरूकता

0: प्रचार कर कार्यक्रमों में नई सामग्री एवं ताजगी बनाए रखने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
1: सुरेश जी, साइकिल के नए नियमों पर हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई, आभार। वैसे तो आमतौर पर जापान में लोग नियमों का बखूबी पालन करते हैं, लेकिन साइकिल सवारी के दौरान मोबाइल जैसे आधुनिक जमाने के साधनों के उपयोग से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। कारण तो और भी थे, इसलिए सख्ती करनी ही पड़ी। तो शंगरीला जी, आपकी क्या राय है? क्या अभी तक आप ब्लू टिकट से बची हुई हैं कि नहीं, ये बताइए।
0: अरे भाई शायला जी, मैं तो बहुत ही ध्यान से साइकिल चलाती हूँ।
1: अच्छा।
0: इसलिए अभी तक तो कोई चालान नहीं कटा, लेकिन नियमों में इतने सारे बिंदु हैं कि थोड़ा असमंजस भी हो रहा है कि कब कोई कहाँ गलती हो जाए, इसलिए साइकिल सवारी के दौरान थोड़ा और ज्यादा ध्यान देने लगी हूँ।
1: अरे मैं आपको एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती
0: हूँ। अच्छा,
1: हाँ, कि लोग इन ब्लू टिकट से डरावने उनको सपने आने लग गए हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, ऐसा भी है। तो देखिए, जिस दिन से ये नियम लागू होने वाले थे, तो उससे एक दिन पहले रात को मेरे बेटे को सपना आया कि जैसे ही वो घर से बाहर निकला, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो वो इतनी दहशत में था कि मैं सही से तो आज साइकिल चला पाऊंगा कि नहीं, तो उससे उसको सपने आने लगे।
0: जी, लोगों की नींदें उड़ी हुई है।
1: बिल्कुल। तो आप भी ध्यान रखिए, मैं भी रखूंगी। और सुरेश जी, जहाँ तक बात साहित्य सरिता के पुनर्प्रसारण की है, तो साहित्य प्रेमी श्रोता की शिकायत तो जायज है, लेकिन कार्यक्रमों में ठहराव की बात से मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, आप हमारी वेबसाइट पर शो के अगर पेज पर जाएं, तो आपको अलग अलग विषय वस्तु पर कई नई वीडियोस मिलेंगी। और जैसे बीते दिनों हमने कल्चर क्रॉसरोड यानी संस्कृति मेल कैटेगरी में अविस्मरणीय स्वाद पर एक वीडियो साझा की थी।
0: और जब इस वीडियो की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, तो आप जानेंगे 16,000 लोगों ने इसे लाइक किया है।
1: अच्छा।
0: और साथ ही कई लोगों ने कमेंट करके अपने अपने पसंदीदा व्यंजनों की यादें सबके साथ बांटी। ज्यादातर लोगों के कमेंट में माँ के हाथ का स्वाद सबसे प्रिय है।
1: अच्छा।
0: कुछ अनोखे व्यंजनों के नाम भी पता चले। वायला जी, आपकी कोई ऐसी याद है जो किसी खास व्यंजन से जुड़ी है?
1: देखिए शंगरीला जी, मुझे याद है कि मेरी माँ शक्करकंद के गुलाब जामुन बनाया करती थी।
0: शक्करकंद के गुलाब जामुन, पहली बार सुन रही हूँ ये नाम।
1: ये इतने मुलायम होते हैं कि क्या कहूँ। अगर कभी आपको इसकी रेसिपी मिले तो आप भी जरूर बनाकर देखें। और अगर मैं जापान की बात करूँ, तो जब मैं पहली बार जापान आई थी, तो डिज्नीलैंड गई थी।
0: अच्छा।
1: और वहाँ मैंने पहली बार जापानी शैली की करी खाई थी, तो उसके बाद तो मैं जापानी करी की दीवानी हो गई थी।
0: वो डिज्नीलैंड की वजह से थी कि जापानी करी के स्वाद की वजह से?
1: पता नहीं उस दिन क्या था, लेकिन मैं बहुत बड़ी फैन हो गई जापानी करी की। और आप भी बताएं ना, आपको क्या पसंद है?
0: देखिए, एक खास याद तो मेरे कॉलेज के जमाने की है, जब मैं छात्र आदान प्रदान के दौरान राजस्थान से उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास जानला गाँव में रुकी थी। उस समय जिनके आम ठहरे थे, वे कच्चे नारियल के स्टफ्ड पराठे बनाती थी।
1: अच्छा।
0: वैसे पराठे मैंने आज तक दोबारा नहीं खाए। उसके अलावा जब भी मैं अपने ननिहाल जाती हूँ, तो मेरे लिए पुरन पोली हमेशा ही बनती है। वो स्वाद मेरे लिए बहुत ही खास है।
1: अच्छा। तो मित्रों, आप भी अपने किसी पसंदीदा व्यंजन की यादें हमसे जरूर साझा करें,
0: और हो सके तो उसकी तस्वीर भी भेजें। और हाँ, कल्चर क्रॉसरोड यानी संस्कृति मेल में अविस्मरणीय स्वाद की वीडियो भी जरूर देखिए और बताएं कि आपको कैसी लगी।
1: जी, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं पश्चिम बंगाल पूर्वी बर्धमान से प्रदीप बसाक जी का ये लंबा सा पत्र। वाह वाह, आपने भी भोजन का ही जिक्र किया है।
0: अरे वाह, किस बारे में है?
1: देखिए, लिखते हैं, मैंने 12 मई को बिरयानी पर एक फेसबुक पोस्ट देखी थी। बिरयानी का नाम सुनते ही मन जैसे खुश हो उठता है। खुशबूदार चावल, नरम मांस, मसालों का अद्भुत मेल और गर्मा गर्म परोसने का अंदाज, सब मिलाकर बिरयानी केवल एक भोजन नहीं बल्कि एक भावना, एक याद और लोगों को जोड़ने वाला खास एहसास है। हमारे यहाँ भी बिरयानी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। प्रियजनों के साथ एक प्लेट बिरयानी बांटकर खाने की खुशी सचमुच अलग ही आनंद देती है। आज के समय में बिरयानी केवल खाने की सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत से लोगों की रोजी रोटी और सपनों से भी जुड़ी हुई है।
0: अरे वाह।
1: विशेष रूप से भारतीय और नेपाली रसोइयों के हाथों से बनी बिरयानी जापान सहित दुनिया के कई देशों में बेहद लोकप्रिय हो चुकी है। विदेश की धरती पर अपनी संस्कृति और स्वाद की पहचान बनाए रखना वास्तव में गर्व की बात है।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन देखिए, दुख की बात यह है कि जापान में नए वीजा संबंधी

0: ही कुछ नियम विदेशी रसोइयों और रेस्तरां व्यवसायियों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गए हैं। जिन्होंने वर्षों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई, आज वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। काम खोने का डर और देश छोड़ने की आशंका उनके सपनों को धीरे धीरे धुंधला कर रही है। एक रसोइया केवल खाना नहीं बनाता, बल्कि वो अपने अनुभव, संस्कृति और प्रेम को भी लोगों तक पहुंचाता है।
1: सही कहा।
0: इसलिए ऐसे कुशल लोगों को खो देना केवल व्यापार की हानि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विविधता की भी क्षति है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे निर्णय लिए जाएंगे जिनसे विदेशी रसोइये और रेस्तरां व्यवसायी सुरक्षित रूप से काम कर सकें और दुनिया भर में बिरयानी की ये स्वादिष्ट परंपरा और भी अधिक फैल सके।
1: प्रदीप जी, इतने विस्तार से अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं कि सभी का मंगल हो और किसी की भी रोजी रोटी का नुकसान ना हो और बिरयानी का ये स्वाद हमेशा लोगों की जुबान पर बना रहे। और देखिए, अब समय हो चला है श्रोताओं को फ्रीक्वेंसी बताने का, तो मित्रों फटाफट नोट करें हमारी फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। अब देखिए, टोक्यो से रुमा गुप्ता ने पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता की सराहना की है। लिखती हैं, पंकज त्रिपाठी के साथ हुई भेंटवार्ता ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इसे सुनाने के लिए धन्यवाद। भविष्य में भी ऐसी वार्ताएं सुनाएं।
1: रुमा जी, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा परिवार में आपका स्वागत है और कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया
0: जी।
1: वादा रहा, आगे भी ऐसी रोचक वार्ताएं जरूर सुनाएंगे और आप भी हमसे वादा करें कि आप पत्रों का ये सिलसिला जारी रखेंगी। और ये अगला पत्र है झारखंड जमशेदपुर से SB शर्मा जी का। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालिया चीन यात्रा पर उन्होंने अपनी राय दी है।
0: अच्छा।
1: और साथ ही लिखा है, देश दुनिया के समाचार सुनाने के लिए NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा को धन्यवाद।
0: शर्मा जी, पत्र के लिए धन्यवाद। आगे भी कार्यक्रम सुने और अपनी राय से अवगत कराएं। अब देखिए, जयपुर से पथिक जैन जी ने लिखा है कि चेरी के देश से कार्यक्रम की टीम को मेरा नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम समय समय पर अवसर मिलने पर सुनता हूँ। मुझे लगता है कि आप नियमित लिखने वालों के ही पत्र शामिल करते हैं। शंगरीला जी, देखिए थोड़ी सी शिकायत है इनकी।
1: ऐसी बात बिल्कुल नहीं है पथिक जी।
0: देखिए आगे कह रहे हैं कि मैंने अनेक बार पत्र लिखे परंतु मेरे पत्र को शामिल नहीं किया गया। मैंने सुझाव भी दिया था कि जो श्रोता ऑनलाइन उपलब्ध कार्यक्रम को उस समय में डाउनलोड कर सकें और सुविधानुसार सुन सकें। अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी से साक्षात्कार के तीनों भाग सुने। पंकज त्रिपाठी जी जमीन से जुड़े अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनकी बातों से ऐसा लगा कि ये हमारे बीच के ही हैं।
1: वाह, पंकज जी को लोग आज भी याद कर रहे हैं
0: जी।
1: और पथिक जी, कार्यक्रम पसंद आया ये जानकर बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए देखिए, सभी श्रोता बहुत प्रिय हैं, सभी बराबर हैं। जब भी हमें आप लोगों के पत्र मिलते हैं, हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं। हाँ, शायद कभी थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन कोताही तो कतई नहीं। लेकिन शिकायत तो हमारी ओर से भी है कि आप बड़े दिनों बाद हमें याद कर रहे हैं।
0: हाँ, पहले तो काफी जल्दी जल्दी पत्र इनके मिला करते थे
1: जी,
0: लेकिन अब पता नहीं कहाँ व्यस्त हो गए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रसारित होने वाले हमारे अधिकांश कार्यक्रमों का आनंद एक सप्ताह तक तो आप ले ही सकते हैं
1: जी। और वहीं देखिए, कुछ कार्यक्रमों की वीडियो तो साल भर उपलब्ध रहती हैं
0: जी।
1: जापान की रेलगाड़ियों, प्राकृतिक नजारों आदि पर कई वीडियो हैं हमारी वेबसाइट पर। बीते सप्ताह टोक्यो का जौहरी बाजार कहे जाने वाले ओकाची माची इलाके पर भी एक वीडियो प्रेषित की गई है।
0: ओकाची माची तो देखिए, यहाँ कई भारतीय जौहरियों के भी कार्यालय और दुकानें हैं और काफी रोचक जगह है
1: जी। हाँ, वहाँ जाएंगे तो आपको अक्सर भारतीय लोगों की लोग घूमते हुए दिख जाएंगे।
0: अच्छा।
1: खूब रौनक भी रहती है।
0: अच्छा।
1: और आजकल विदेशी ग्राहकों की वहाँ संख्या भी बढ़ रही है। और इस कार्यक्रम की लिंक फेसबुक पर साझा की गई, जिस पर ऋषि सिंघवी ने ढेर सारे इमोजी के जरिए भारत और जापान के बीच संबंधों को बड़े मजेदार तरीके से दिखाया है। भारत को दर्शाते हॉकी, क्रिकेट और तिरंगा के इमोजी हैं, तो जापान का प्रसिद्ध तोरी गेट, हीना मात्सुरी की गुड़िया और राइजिंग सन है।
0: अच्छा, और देखिए ऋषि जी का एक कमेंट और भी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि जापान और भारत के बीच खूबसूरत संबंध है। भारत जहां मैं पैदा हुआ और जापान जहां मैं काम करता हूं। हम ओकाचीमाची और यहां बसे भारतीय समुदाय पर और कार्यक्रम देखना चाहेंगे।
1: अच्छा ऋषि जी, यकीनन कोशिश करेंगे।
0: जी जी।
1: और वायला जी, जैसे भारत में जापानी एनिमे बहुत लोकप्रिय है, वैसे अब जापानी संगीत भी लोकप्रिय होने लगा है।
0: अरे वाह, ये तो आपने अच्छी खबर दी।
1: जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात जापानी गायक फूजी खाजे ने भारत में कॉन्सर्ट किया जो बिल्कुल हाउसफुल गया।
0: अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मुझे लगता है शायद भारत में कॉन्सर्ट करने वाले वे पहले जापानी कलाकार हैं, उन्हें भारत से खास लगाव भी है।
1: जी हाँ, उनका परिवार भारत के अध्यात्म से काफी प्रभावित है। उन्होंने NHK के टाइनी डेस्क कॉन्सर्ट्स जापान कार्यक्रम में शिरकत की थी और अपने गीतों की लड़ियों से दर्शकों को आनंद विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम की वीडियो भी वेबसाइट पर शो कैटेगरी में उपलब्ध है। गानों के सबटाइटल अंग्रेजी में है तो बोल समझना आसान है।
0: तो शांग्रीला जी, क्यों ना आज कार्यक्रम में श्रोताओं को फूजी खाजे का ही एक गीत सुनाया जाए। तो ये गीत है ग्रेस, और आपको बता दें कि इस गीत को भारत के कई शहरों में शूट किया गया है, जिसमें हरिद्वार भी है, और इसमें स्थानीय लोगों को भी देखा जा सकता है।

0: दोस्तों आशा है आपको भारत में फिल्माया ये गीत पसंद आया होगा और अब जाने की अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और वायला खवानो को।
0: सायोनारा, नमस्कार।